हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाई है हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मे जे बुझे ताहो मैं कहे ना कोए गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाईया चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जी ले फिर दे गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हादरा हदूर कथना कथिना आवे तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाई खाय हुक्मी हुक्म चलाए राव नानक विकसै वे परवाह साचा साहेब साच

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले,

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहावे।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

गावन पंडत पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी।

अनाहत जुग जुग एक ओवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक ओवेश एक दूजी बोला खोए लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

0: Like a Gold TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
3: 07300998823 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
4: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, केटरर्स, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
6: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
7: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
8: जो कल जन्मे हुआ था वो बिग बॉस में दोबारा होगा. तथास्तु.
9: बिग बॉस 20 स्टार्टिंग फ्रॉम संडे द 6th ऑफ सितंबर ओनली ऑन कलर्स टीवी, स्काई चैनल 706, वर्जन मीडिया 826, EE396.
10: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ.
11: अपना बनाया तेनु.
10: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में. टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20. VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल. बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216. टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फर्ड.
12: Like a Radio Network, proud hospitality partner.

0: Mills Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: लाइका गोल्ड
2: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट travelhubworld.com
4: From Southall streets to the London rain, from the tube to your sofa again. UK, the big bang of entertainment, Jio Hotstar is here. Blockbuster movies, the latest shows, best of reality shows and stars you know. From stories that thrill to moments that delight, there's something new to watch every night. So get ready. Jio Hotstar is now live in the UK.
5: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
6: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
7: अयोध्या की आवाज अब लंदन की धरती पर सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में देवी पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा श्री राम कथा
8: नाम है तेरा
7: 4-8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 02084-260678 पर कॉल करें जय श्री राम
9: सिर्फ 2 दिन बाकी इस जन्माष्टमी कान्हा के जन्मोत्सव की खुशियां मनाइए जैमिन फूड्स के साथ जैमिन द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया खुशियों का खजाना
10: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर मलेशिया और थाईलैंड सेंटोसा आइलैंड बाटू केव्स जेंटिंग हाइलैंड्स बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन फ्लाइट्स 4-star होटल्स इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956-154-846. Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
11: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
12: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears. Give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
13: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan.
14: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे।
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कव्वाली की महफिल, कव्वाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
3: अपना बनाया तेनु,
2: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का। वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफुट टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फट टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20। VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फट।
4: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 our line 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
5: फ्रॉम साउथ हॉल स्ट्रीट टू द लंदन रेन, फ्रॉम द ट्यूब टू योर सोफा अगेन, UK, the big bang of entertainment, Jio Hotstar is here. Blockbuster movies, the latest shows, best of reality shows, and stars you know. From stories that thrill to moments that delight, there's something new to watch every night. So get ready. Jio Hotstar is now live in the UK.
6: Dreaming of paradise?
7: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
8: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
7: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
8: At all protected.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Hi, this is Chitranida Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the NKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
11: Across Greater London, this is Kajal on Breakfast.

0: लता जी और बाबला मेहता की आवाज में था ये गाना और ये खूबसूरत म्यूजिक दिया है शिव हरि ने और यशराज चोपड़ा की फिल्म चांदनी से लिया था हमने ये गाना और उससे पहले तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा हीरो नंबर वन फिल्म का गीत आपको सुनवाया और लीजिए इसी के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स और ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर है आप सबका साथ देने के लिए अब से लेकर दोपहर के एक बजे तक सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी गुड मॉर्निंग
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो भारत पैसा भिजवाने की सोच रहे हैं बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप देन आज £1 आपको देगा 127.9 भारतीय रुपए
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Mia!
3: Yeah?
2: Don't forget flu vaccine today.
3: Really?
2: Yeah, online consent form signed ages ago. It helps stop you getting really poorly with flu or passing it on to your baby brother.
4: If you have a child in reception to year 11, help protect them with the flu nasal spray vaccine. Your child's consent form could arrive by email, text, through your school app or in their bag. Look out for it and complete it. Stay strong. Get vaccinated. Find out more at nhs.uk/child-flu.
5: ये है लाइका गोल्ड
6: तथास्तु
7: बिग बॉस 20 स्टार्टिंग फ्रॉम संडे द 6th ऑफ सितंबर ओनली ऑन कलर्स टीवी स्काई चैनल 706 वर्जन मीडिया 826 EE396
8: नो सॉरी मेट
9: नो वी डोंट हैव दैट पार्ट
10: हैव यू ट्राइड डाउन द रोड
11: वी कैन गेट इट इन बट इट वोंट बी फॉर अ फ्यू डेज
12: देयर आर सम थिंग्स इन बिजनेस यू कांट कंट्रोल बट यू कैन स्टे इन कंट्रोल ऑफ योर वैन्स डाउनटाइम Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
13: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
14: देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग
13: डेजर्ट सफारी
14: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम
13: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे
14: तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
7: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
15: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
16: अयोध्या की आवाज अब लंदन की धरती पर सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में देवी पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा श्री राम कथा
17: नाम है तेरा
16: 4-8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 02084-260678 पर कॉल करें जय श्री राम
18: सितंबर महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे
19: तमे बता पुरुष हो तो लग्ने कुवारा हो छो
0: ए तमे स्त्री अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओगोवानू बंद करो
18: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाईनी जानमा हवे राइसली पॉटर्स बार इलफर्ड साउथ लंदन अने ल्यूटनमा टिकिट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931-534-270 नाटक नु नाम याद राखजो
11: हालो पटेल भाईनी जानमा
3: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the The New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
8: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
10: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
20: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
21: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
22: Taiyar ho jaiye ek yaadgar show ke liye.
21: Ram aur Sita ki kahani ab stage par zinda hone wali hai. Diwali story, the journey of Ram and Sita.
22: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
23: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
24: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
25: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: सदस्य मोहम्मद रफी के साथ आवाज मिला रही हैं सुमन कल्याणपुर और कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है। ये गाना जाता है मेरी ओर से आप सभी के लिए जो इस शो में मेरा साथ दे रहे हैं, और ढेरों मैसेजेस मिले हैं जिन्हें जरूर पढ़ूंगी, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो अब आपको सुनवाते हैं आज के प्रमुख समाचार, और आपको ये भी बता दूं कि शो में ऋतु शर्मा है आपके साथ, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: तो आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर आ रही है भारत से। एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा ने इतिहास रचा है। भारतीय वायुसेना यानी कि IAF की एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा नॉन मेडिकल ब्रांच की इस रैंक तक पहुंचने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाइयां। इसके अलावा SCO सम्मेलन में PM मोदी का संदेश ये है कि उन्होंने कहा है संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर दोहरे रवैये यानी कि डबल स्टैंडर्ड्स को खत्म करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने देश में 7.8% GDP ग्रोथ का जिक्र करते हुए डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए यानी कि वेड इन इंडिया और स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील की है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने नीट विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी FIRs को रद्द करने का आदेश दिया है। और रेल मंत्रालय ने राजस्थान और गुजरात के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए सूरत से उदयपुर सिटी के बीच नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। सुनवाते हैं आपको कुछ इंटरनेशनल खबरें। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य झड़पें और तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मिसाइल लॉन्च सिस्टम पर हमलों के बाद उसे एक असफल राष्ट्र यानी कि फेल्ड नेशन करार दिया है। उधर बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो दिसंबर तक अपने देश खुद वापस लौटेंगी और उनकी वापसी को किसी प्रत्यर्पण संधि से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नेपाल में बारिश और बाढ़ के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं। भारत सरकार वहां फंसे अपने सैकड़ों नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रही है। खेल बिजनेस से खबर सुनाते हैं आपको। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 39 ईयर्स की उम्र में इंटरनेशनल फुटबॉल से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। और भारत की GDP ग्रोथ पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून में 7.8 पर पहुंच गई है, जिससे RBI को 7% के अनुमान को पीछे छोड़ दिया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.2% और सर्विस सेक्टर में 10% की बढ़त दर्ज की गई है। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is Like a Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

लता जी की आवाज में खूबसूरत गाना फिल्म रजिया सुल्तान से लिया था और आप सबके ढेरों मैसेजेस मिलते जा रहे हैं। थैंक यू मालती जी लिखती हैं, जय गणपति देवा। यस, आज कुछ है मैं बताऊंगी आपको कि आज कौन सा त्यौहार मना रहे हैं। भाई भारत त्योहारों का देश है और ख़ास तौर पर ये जो मौसम होते हैं इसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ होता है और आज भी कुछ है उसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल तो थैंक यू कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं देसराज बसंत जी, आपको हमेशा ही बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ भेजते हैं, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपने एक आज बहुत अच्छी चिंतन के लिए कुछ मटीरियल भी भेजा है, लेकिन आज का चिंतन मेरे पास तैयार है तो मैं इसे ज़रूर कल शामिल करूंगी। थैंक यू इन एडवांस, कल ज़रूर इस चिंतन को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। थैंक यू शोभना राय जी, थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू मानु जी, तोजी जी, थैंक यू संध्या भाव सर, थैंक यू संतोष जी, हिमांशु पटेल जी, गुरुदेव गांजा स्वागत है आपका, सत्यनारायण सैनी जी भारत से हमारा साथ दे रहे हैं, राजेश जी थैंक यू कहते हैं, रोज सुबह स्टूडियो आने का अनुभव कैसा लगता है? अच्छा है, आप सबसे जब मिलना होता है तो मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। और देखिए पता ही नहीं चला आज वेंसडे आ गया साल का, साल कहाँ से यार, हफ्ते का आधा दिन

0: By Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Ye hai. Like a Gold.
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
3: लेकिन उस गाने को बजाने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर हॉलिडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रैवल को कॉल कीजिए ऑन 0208-574-8410 पर. साउथ हॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: Oh, your school has just emailed your flu vaccine form. I'll do it now.
5: Do I have to have that?
4: Yes, it's a quick and painless spray up your nose that helps stop you getting really poorly with flu or passing it on to Nanny and Grandad.
5: Okay then.
6: If you have a child in reception to Year 11, help protect them with a flu nasal spray vaccine. Your child's consent form could arrive by email, text, through your school app or in their bag. Look out for it and complete it. Find out more at nhs.uk/child-flu. Stay strong. Get vaccinated.
1: Yeah, like a gold.
7: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
8: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
8: विजिट travelhubworld.com.
9: Deirdre, look, it's the bottom lids this time, sliding across their car bonnet.
10: Leave them be, Philip. They just claim confident.
9: Claim confident?
10: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
9: Deirdre, come back here.
11: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
12: Every morning a shopkeeper opens his doors.
13: Lights on, shutters up, staff ready.
12: But today's customers don't start on the high street.
13: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
12: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
13: They walk into your competitors.
12: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
13: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
14: The wait is finally over.
15: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
14: Mirzapur is coming to the big screen.
16: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
14: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
17: Abhe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
14: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, releasing in cinemas 4th September.
16: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
18: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
19: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
18: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
19: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 0192322727274. बुक योर टेबल टुडे.
2: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
5: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स. क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
2: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
6: हाय, दिस इज अरबाज खान. फॉर 2 डेज दुबईज लीडिंग डेवलपर्स विल बी देयर इन लंदन 5th एंड 6th सितंबर 2026, लंदन हिल्टन ऑन पार्क लेन. स्पीक डायरेक्टली विद द डेवलपर्स शेपिंग Dubai's future. I look forward to seeing you at the NKN Media Dubai Property Expo in London. Discover your next investment.
1: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
3: From Southall streets to the London rain. From the tube to your sofa again. UK, the big bang of entertainment. Jio Hotstar is here. Blockbuster movies, the latest shows, best of reality shows and stars you know. From stories that thrill to moments that delight, there's something new to watch
20: every night.

0: ऐसे
1: सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर
2: हर मौके पर काम ये आए घर घर खुशियां लाए
1: जहां जिंदगी वहां सेट गो माइक्रो
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
4: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.

0: Satco microwave food.
1: We're finally going home for the wedding.
2: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
2: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
2: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
4: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
6: सिर्फ 2 दिन बाकी इस जन्माष्टमी कान्हा के जन्मोत्सव की खुशियां मनाइए जैमिन फूड्स के साथ. जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया. खुशियों का खजाना.
7: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
8: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
9: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
10: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
9: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
11: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
12: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
14: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
15: Cajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold.
16: Mm-hmm.

0: चाहे आर डी बर्मन किशोर कुमार का कॉम्बिनेशन हो या बप्पी लहरी और किशोर कुमार का, गाने एक से बढ़कर एक हैं, आपको थिरकने पर मजबूर कर ही देते हैं, जैसे कि ये गाना था। आप सबने पसंद किया, सो थैंक यू। एंड विजय गुडूरी जी, आप आज बारिश के कारण गोल्फ खेलने नहीं जा पाए तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, पर मेरे लिए तो अच्छा है, आप अब सुन पा रहे हैं मेरा शो, सो थैंक यू आपके साथ देने के लिए। और इसके अलावा सलमा जी कैंट में हमें सुन रही हैं, फारूक मोहम्मद जी, हिमांशु पटेल, गुरुदेव गांजा एंड प्रज्ञा जी, जितने भी साथी साथ दे रहे हैं, सुनते रहिए, ये गाना ले जाएगा न्यूज़ तक।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और इस शो में आज भी ऋतु शर्मा आपके साथ है, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। स्वागत है आपका इस शो में। और ये समय है चिंतन का, चिंतन यानी कि आज का विचार। आज के चिंतन में बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी जो अक्सर हम सब करते हैं। जैसे हमको पता है कि जो हम खाना खाते हैं वो अगर एक या दो दिन में हमारे शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, अगर नहीं निकला तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। और इसी तरह से जो भी हम पीते हैं वो भी कुछ घंटों के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, अगर वो भी नहीं निकला तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। जो हम सांस लेते हैं वो भी कुछ सेकंड्स में बाहर निकल जानी चाहिए, अगर नहीं निकली तो क्या होगा, हम मर भी सकते हैं, बीमार होना तो दूर की बात है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इसी तरह से कुछ नेगेटिव बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या वगैरह वगैरह, जिनको हम अपने अंदर दिन, महीनों, सालों तक रखे रहते हैं, और इन नेगेटिव विचारों को अगर समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकाला तो क्या होगा, ये हमें बीमार बना देंगे, हमें मेंटल पेशेंट बना देंगे, हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। निर्णय हमारा ही होगा कि हमें क्या करना है। चलिए इन सब बातों से रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ जो हमें इन बातों को और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगी। शहर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरुजी थे, उनके पास एक बार एक लड़का पहुंचा, बहुत ही निराश, गुस्से से भरा हुआ, चिड़चिड़ा सा। गुरुजी ने उसे देखा, बोले, भाई क्या परेशानी है तुम्हें? उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों से बहुत नफरत करता हूँ, जानते हैं क्यों? उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं महीनों से उनका दिया हुआ धोखा भूल नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन हर समय सुलगता रहता है। गुरुजी ने उसकी सारी बातें शांति से सुनी और फिर उन्होंने उस युवक को एक खाली ग्लास दिया, उसे ग्लास पकड़ाया और उसमें थोड़ा सा पानी भर दिया। युवक कहता है, गुरुजी क्या कर रहे हैं आप? गुरुजी बोले, थोड़ा शांत रहो, और कहा, इसे ऐसे ही उठाकर थोड़ी देर तक पकड़े रहो। युवक ने ग्लास पकड़ लिया। 5 मिनट बाद गुरुजी ने उस लड़के से पूछा, कैसा लग रहा है? युवक बोला, कुछ नहीं लग रहा, ये ग्लास तो बहुत हल्का है, आपने मुझे क्यों पकड़ाया है? 1/2 घंटे बाद गुरुजी ने उससे फिर पूछा, अब कैसा लग रहा है? युवक बोला, हाँ अब थोड़ा हाथ मेरा थक गया है, लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? 2 घंटे बीत गए, युवक का हाथ दर्द से कराने लगा। उसने कहा, गुरुजी मेरा हाथ अब पूरी तरह से सुन्न हो चुका है, मेरा कंधा भी बहुत दुख रहा है, और अगर मैंने इसे थोड़ी देर और पकड़े रखा तो मेरा ये हाथ बेकार हो जाएगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, ग्लास को नीचे रख दो। युवक ने तुरंत ग्लास मेज पर रख दिया और राहत की सांस ली। और फिर गुरुजी ने उस लड़के को समझाया कि देखो, पानी का वजन तो कभी भी नहीं बदला, लेकिन तुमने इसे जितनी देर पकड़े रखा ना, ये उतना ही भारी होता गया। खाना, पानी और हवा की तरह कड़वी बातें और
नकारात्मक विचार भी बाहर निकालने के लिए ही होते हैं। अगर तुम किसी से घृणा और ईर्ष्या को कुछ मिनट रखोगे तो तुम्हें तनाव होगा, कुछ दिन रखोगे तो बीमार पड़ जाओगे, और अगर सालों तक पकड़े रखोगे तो तुम्हारा मन मानसिक रूप से अपाहिज हो जाएगा। और ये सुनते ही उस युवक को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने समझ लिया कि दूसरों ने जो बुरा उसके साथ किया सो किया, लेकिन वो खुद के साथ ज्यादा बुरा कर रहा है। उन बातों को हर वक्त याद करके, उन बातों को हर वक्त सोचकर वो अपने शरीर को, अपने मन को तकलीफ दे रहा है। और उसी दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने मन से ये सारी बातें हटाने की कोशिश करेगा और अपने मन को शांत रखेगा। क्योंकि जब कोई बात हमारे साथ हो जाती है, वो इंसान तो करके निकल जाता है, लेकिन हम उस बात को सोच सोच कर खुद को परेशान करते हैं। कभी कभी इतने चिड़चिड़ा जाते हैं कि घर वालों के प्रति भी व्यवहार अच्छा नहीं रहता, लोगों को भी लगता है पता नहीं क्या हो गया है। तो इन सब का एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि जिसने जो किया उसे उसका फल ईश्वर ज़रूर देगा, लेकिन आप अपने साथ खराब मत कीजिए। अपने मन को शांत रखिए, प्रसन्न रहिए, और उस बुरी बात को, बुरे वक्त को भुलाने की कोशिश कीजिए।

0: आज का चिंतन हमें चिंतन करने पर, विचार करने पर मजबूर करता है कि जिसने आपको दुख पहुंचाया है वो इतना खास नहीं कि आप हमेशा उसके बारे में सोचें और खुद को दुख दें। उसे माफ करना या ना करना ये आपके बस में है, लेकिन उसके बारे में सारा दिन सोचकर और उस बात को सोचकर अपनी तबीयत, अपना दिमाग खराब बिल्कुल भी ना करें और दूसरे कामों में अपना मन लगाएं जो आपको खुशी प्रदान करें। यही था आज का चिंतन। और चिंतन के साथ जो गीत था वो लिया था मैंने फिल्म काजल से, जिसे आशा भोसले ने गाया था और खूबसूरत धुन बनाई थी पंडित रविशंकर शर्मा ने, जो कि जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और आज का चिंतन आप सबको अच्छा लगा है, गीत भी आपने पसंद किया है। थैंक यू किरण जी हैरो से, थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू केतकी जी, आपको भी अच्छा लगा आज का चिंतन और गीत। थैंक यू गिरीश जी, थैंक यू संध्या बावसर जी, थैंक यू शेखर आनंद जी, थैंक यू विजय गुजूरी जी, महेंद्र बाजारिया जी, थैंक यू विनोद जी, निर्मला जी, हरविंदर जी, थैंक यू प्रकाश सुथार जी, आपका मैसेज मिला है। थैंक यू जैस्मीन जी, आपका भी मैसेज है। थैंक यू रोहित शर्मा जी, फारूक जी, हिमांशु पटेल, जितने भी साथी साथ दे रहे हैं, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए और चिंतन को पसंद करने के लिए भी। चलिए अब लौटते हैं बैक टू बैक गीतों की ओर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको याद दिला दें कि आज 1 pound के बदले में आप ले सकते हैं 127.9 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी लागू रहेंगे।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Laika Gold.
3: Tathastu.
4: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colours TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE 396.

0: लीजिए मोहम्मद रफी साहब के आवाज में बैक टू बैक के दो गाने आपने सुने और आप सबने इन गीतों को पसंद भी किया, तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपको बताते चलें, जिन्होंने ढेर सारे मैसेजेस भिजवाए हैं उसमें नाम है वीरेंद्र चौधरी जी आपका, कहते हैं गाने मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, सो थैंक यू। थैंक यू विजय गुरोरी जी, उम्मीद का गाना तो आप सबका फेवरेट है, मैं जानती हूँ, इट्स माई फेवरेट टू। गुरुदेव गांजा, थैंक यू। उलाशी, भावना जी, दिनेश पोपट जी आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो स्वागत है आप सबका।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
1: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरी वैली .net।

0: Mail now. info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Cool. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे
2: मेकिंग समर फील बेटर ऑन द लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: यस, ये गाना जब फिल्म आई थी तो क्या सुपर डुपर हिट हुआ था, और भाई शादी की बारात आ रही हो और उसमें ये गाना ना बजे, ऐसा कैसे हो सकता है। सुपर हिट फिल्म थी ये मुमताज और शशि कपूर की। और आपके मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलते जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। असद कहते हैं कि बैक टू बैक रफ़ी साहब के गाने सुनकर मज़ा आ गया, और बजाइए। बिल्कुल, अभी तो आपका मेरा साथ काफ़ी लंबा है, ज़रूर कोशिश करूँगी और भी अच्छे अच्छे गाने चुनकर आपको सुनवाऊँ। भावना, आपको अमिताभ बच्चन का गीत पसंद आया, थैंक यू। और हमारे साथ हैं जहीर जी, कराची से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। विजय गुनोवा जी, आप भी प्रोग्राम सुन रहे हैं तो सुनते रहिए, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ख़ास इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं मर्सिडीज बेंज वैंस और लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स के सहयोग से हम आपको ये बता रहे हैं। खास इन्फॉर्मेशन है, जब आप खुद का बिजनेस चलाते हैं तो आपकी वैन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं होती, आपकी रोजी रोटी और इज्जत सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। और इसी सोच के साथ मर्सिडीज बेंज वैंस लेकर आया है अप टाइम प्रॉमिस। आपके बिजनेस को लगातार चलाते रहने के लिए अनेक फायदों का एक पैकेज, जैसे 24/7 रोड साइड असिस्टेंट, ज्यादा देर तक वर्कशॉप का खुला होना, गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग और भी बहुत कुछ। यानी आपकी वैन के खराब होने पर आपके बिजनेस को बिना रुके आगे बढ़ाते रहने के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो सब एक ही जगह अब आपको मिलेगा। मर्सिडीज बेंज वैंस आपके साथ हैं, साथ ही मर्सिडीज बेंज वैंस सर्च करें और अप टाइम प्रॉमिस के बारे में और जानें। नियम और शर्तें लागू होंगी। मर्सिडीज बेंज वैंस अप टाइम प्रॉमिस कुछ पात्रता मानदंडों, वाहन की अनुकूलता और मर्सिडीज बेंज के अधिकृत रिपेयर से सर्विस कराने पर निर्भर करता है। नियम और शर्तें लागू होंगी जैसा कि मैंने आपको बताया, और इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कीजिए mbvans.co.uk/uptimepromise पर। अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर। तो £1 आज आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £103.6 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. This is Leica Gold.
3: Tathastu.
4: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colors TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE396.
5: बोले, तूने क्या कर रहा है रे?
6: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
5: ये तो बताओ, कोई पता चला?
6: गुरु, गुरु.
7: इस 6 नवंबर को The Prince Regent Hotel में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, Crazy for किशोर on 6 नवंबर.
8: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
5: शीघ्र शीघ्र.
7: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर. टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
9: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
10: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
11: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
12: Southall Travel can take you there.
3: Safo Travel, Auto Protected.
12: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
13: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
12: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
13: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
14: Hey, Prasanna Mahalakshmi kehti hai, bolo prem ki bhasha.
13: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
15: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
16: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
17: Dubai is the place. 11, 11.
16: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
18: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
19: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 our line.
20: We're finally going home for the wedding.
21: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
20: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
21: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
20: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
21: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
20: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
22: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
23: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल.
24: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of Jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
23: Available at ethnic grocery store near you. Ganpati Bappa Moria.
25: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
26: Forgotten memories refreshed. Leica Gold.

0: मोहम्मद रफी साहब और आयशा जी की आवाज में क्या खूबसूरत गाना था फिल्म ममता से, और क्या धुन बनाई थी रोशन जी ने। और उससे पहले आपने अर्पण फिल्म का गीत सुना जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था। और लीजिए, इन दो गीतों के साथ प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर की शुरुआत हो गई है। और अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो स्वागत है आपका इस शो में। और आपको बताती चलूं कि मैं ऋतु शर्मा सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी, और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं जो ये बता रहे हैं कि आप शो को एंजॉय कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। और अब मैं आपके साथ कुछ शेयर भी करने वाली हूँ, और वो ये है कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी। जी हाँ, हमें पता चला है कि 4 से 8 सितंबर के बीच में भारत से लंदन आ रही है देवी पंडित गौरांगी गौरी देवी जी, और जो राम कथा कहने वाली हैं। तो आइए हम गुरुजी राज राजेश्वर जी से बात करते हैं और इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरुजी, स्वागत है आपका लाइका रेडियो नेटवर्क पर। कैसे हैं आप?
1: रितु जी, जय श्री राम। बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छी हूँ, जय श्री राम।
1: जय श्री राम। बहुत अच्छी बात है कि आपने एक समय देकर के मुझे आमंत्रित किया, और जैसे आपने बताया कि भारत से, उसमें भी एक अच्छी बात यह है कि अयोध्या की आवाज लंदन में गुजरेगी। और ये पंडित गौरांगी गौरी जी श्री राम कथा अपने सिद्धाश्रम में करने जा रही है। उसका लक्ष्य ये रहा कि पहले तो प्रथम हम प्रार्थना के लिए, जो नेपाल में जो हुआ है उसके लिए, और नेपाल के लिए हम कुछ कर सके इसीलिए श्री राम कथा का भी आयोजन है। और दूसरी बात है कि हमारे सिद्धाश्रम गुजरात में कम से कम 100 बेटियां पढ़ रही है आदिवासियों की, उनके लिए भी हम थोड़ा साथ सपोर्ट दे, एक कथा के माध्यम से गौशाला में साथ सपोर्ट दे। ये तो सब होगा ही होगा, मगर इंग्लैंड में लंदन के अंदर जो हैरो और वेमली के आसपास जो लोग रह रहे हैं, और अन्य जगह पे फ्रिंचली है, बारनेट है, कई जगह जो रह रहे हैं, वो भी श्री राम कथा का एक आनंद ले। और जैसे आपको पता है कि भव्य और दिव्य
0: जी
1: राम मंदिर अयोध्या में बना है, तो मैंने सोचा कि भाई अयोध्या की ही आवाज हम लंदन में क्यों नहीं लेके आए। अन्य वक्ता तो आते ही पूरे भारत से, पूरे देश से, गुजरात से, वृंदावन से, तो इस बार मैंने सोचा कि अयोध्या की आवाज लंदन में गूंजेगी कथा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, अन्य जगह पे। और उसका एक कार्यक्रम सिद्धाश्रम में 4 से 8 तारीख तो है ही, मगर एक कार्यक्रम हम लक्ष्मीनारायण मंदिर में भी करने जा रहे हैं, एक कार्यक्रम हम इलफड़ के हमारे प्रिंस जी है उन्होंने भी आयोजन किया है, मगर मूल कार्यक्रम जो है उस कार्यक्रम हम यहाँ करेंगे जो इंग्लैंड के सिद्धाश्रम, जो संतों का गढ़ है, जो संतों का एक कहा जाता है कि भारत से निकला हुआ संत एक कहेगा कि भाई हम हमारे घर पे जा रहे हैं। तो यही कार्यक्रम है मूल जिसमें आपके साथ चर्चा करने का मौका मिला।
0: तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि श्री राम कथा तो ऐसी है कि उसे आप जितना सुने उतना ही कम है, और उसको सुनने में जो आनंद आता है उसे तो बयान ही नहीं कर सकते। और ये सब होने जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है।
1: नहीं ऋतु जी, देखो समाज के अंदर आज शांति चाहिए, समाज के अंदर कुछ ऐसी चीजें चाहिए कि भाई हमें कम से कम पीस मिले। आज देखो नेपाल में कैसी स्थिति बनी और ये वॉर चल रहा है, तो इस स्थिति में सिर्फ एक ही काम आता है, भगवान का नाम। और वो भी हमने दोपहर को 12 बजे से 2 बजे के लिए बीच में इसीलिए रखा कि जो लोग ओल्डरी पीपल है, जो रात को नहीं निकल सकते, शाम को नहीं निकल सकते हैं, और अभी अभी तो वेदर भी चेंज होने जा रहा है, तो इसीलिए हमने समय रखा है दोपहर को 12 से 2। और सिद्धाश्रम का तो एड्रेस सबको पता ही है, और आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ, यहाँ नंबर 22 पालमस्टन रोड हैरो में HA37RR ये पोस्ट कोड है। तो रितु जी, रेडियो के माध्यम से आप तो सुनोगे ही, मगर आपको भी प्रश्नों इनवाइट मैं कर रहा हूँ।
0: थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये अपॉर्चुनिटी मैं कहती हूँ कि किसी को भी गवानी नहीं चाहिए, ज़रूर जाइए आप इस राम कथा को सुनने के लिए। और मैं एक बार फिर से पता दोहरा देती हूँ, इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो, और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर लिख लीजिए 0208426 0678। फिर से रिपीट करती हूँ, इट्स 0208426 0678। ठीक है ना गुरुजी?
1: रितु जी, हाँ जी। एक चीज बहुत अच्छी बताई आपने, मगर जिस दिन हम शुरुआत कर रहे हैं ना 4 तारीख से कृष्ण जन्माष्टमी है,
0: हाँ,
1: तो दिन में कथा होगी,
0: हाँ,
1: और रात को हम 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक भगवान कृष्ण,
0: हाँ,
1: का भजन कीर्तन धुन और मटकी फोड़े सब कार्यक्रम भी होगा, तो उसमें भी आपको और जो सुन रहे सभी श्रोताओं को आमंत्रित करूंगा।
0: जरूर कोशिश करूंगी, क्योंकि जन्माष्टमी का फास्ट तो मैं करती हूँ, तो अगर धूमधाम से आप सबके साथ मनाई जाएगी तो मजा दोगुना हो जाएगा।
1: आइए जरूर आइए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लाइक रेडियो का भी।
0: हाँ जी,
1: थैंक यू
0: गुरु जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज जो 1 pound आपको देगा 127.9 भारतीय रुपए, और याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Like a Gold.
4: Tathastu.
2: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colors TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE 396.
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the The New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: सप्टेम्बर महीनामां હાસ્યનો ડબલ ધમાકો ફરી આવી રહ્યો છે।
7: તમે બધા પુરુષો તો લગ્ને લગ્ને કુવારા હો છો,
8: એ તમે સ્ત્રીઓ અમને છે ને પુરુષોને આમ ખોટા ઓગવવાનું બંધ કરો।
6: કોમેડી કિંગ નિમેશ શાહ અને ક્વીન ઓફ કોમેડી મલ્લિકા શાહ લઈને આવી રહ્યા છે સુપરહિટ ગુજરાતી નાટક હાલો પટેલ ભાઈની જાનમાં। હવે રાઇસલી, પોટર્સમાર, ઇલફર્ડ, સાઉથ લંડન અને લ્યુટનમાં। ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને ઓન 0793153427 0। નાટકનું નામ યાદ રાખજો।
9: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
10: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
11: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
12: सिर्फ 2 दिन बाकी इस जन्माष्टमी कान्हा के जन्मोत्सव की खुशियां मनाइए जैमिन फूड्स के साथ। जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया, खुशियों का खजाना।
13: Have you noticed the way fans shout at football matches?
14: Oh, wake up!
13: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
5: need to fly back home this summer holiday, come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
15: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
4: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
16: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
17: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
16: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
18: Calling all samosa lovers! Leica Radio and Ashoka Samosa celebrating World Samosa Day in style. Listen from Monday and all week for your chance to win a £50 Amazon gift voucher. Keep listening. Get ready to enter and celebrate World Samosa Day with Ashoka Samosa and Leica Radio.
19: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
20: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: लता जी और रफी साहब की आवाज़ में था ये गाना, फिल्म का नाम दिल तेरा दीवाना। और आज ये गाना इसलिए सुनवाया क्योंकि आप जानते हैं माला सिन्हा है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और आज है 2 सितंबर, तो आज वर्ल्ड कोकोनट डे भी है। और आपको बता दें कि ये क्यों मनाया जाता है, इसका मकसद है हेल्थ बेनिफिट्स और एग्रो इंडस्ट्री में नारियल के योगदान को लेकर लोगों को जागरूक करना। और अगर आप कोकोनट पसंद करते हैं तो आज आप खा सकते हैं। वैसे मुझे कोकोनट वाटर बहुत अच्छा लगता है, अगर कोई भी कितनी भी अच्छी अच्छी ड्रिंक्स रखी हों और अगर कोकोनट वाटर वहाँ रखा हो तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं वो पी लूँ, क्योंकि मुझे उसकी जो मिठास है, जो नेचुरल उसका स्वाद है, बहुत ही शानदार लगता है। और बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं जिसमें जब आप कोकोनट वाटर ऐड कर देते हैं ना तो स्वाद बढ़ जाता है। इनफैक्ट कई रेसिपीज ऐसी हैं जिसमें अगर आप कोकोनट वाटर डालें तो स्वाद कमाल का आता है। तो आज इंटरनेशनल कोकोनट डे भी है, आज वर्ल्ड कोकोनट डे भी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि भारत तो त्योहारों का देश है और इस मौसम में तो हर रोज़ कुछ ना कुछ होता है। तो आज हर षष्ठी या फिर कहूँ बलराम जयंती है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज की जो तिथि है 6, उसको हर षष्ठी या बलराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। और गुजरात में इसे रंधन छठ भी कहा जाता है। और ये क्यों होती है, दरअसल हर षष्ठी और बलराम जयंती आज ही के दिन होती है। और आप जानते हैं कि बलराम जी जो थे वो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, उनके बड़े भाई थे। और देखिए उनका जन्म श्री कृष्ण से 4 दिन पहले ही हुआ था। फ्राइडे को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और 4 दिन नहीं 2 दिन पहले हुआ था। षष्ठी के दिन बलराम जी जन्मे थे और अष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्मे थे। और आप जानते हैं कि बलराम जयंती का बहुत धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि बलराम जी जो हैं वो शेषनाग के अवतार थे, यानी कि श्री हरि विष्णु ने जब जब जन्म लिया उनके शेषनाग हमेशा उनके साथ रहे। श्री कृष्ण बनकर जब आए तो वो बलराम के रूप में शेषनाग उनके साथ आए, और जब उन्होंने राम जी का रूप धारण किया था तो आई थिंक लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग ही थे। सो आज का त्यौहार कई जगह पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और आज के दिन हल और मूसल की भी पूजा की जाती है, उन्हें हलदर भी कहा जाता है बलराम जी को, और क्योंकि वो खेती और किसानों के रक्षक भी माने जाते हैं। और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी कथाएं भी हैं, आई एम श्योर आप सब जानते होंगे। वैसे एक दो कथा तो मुझे भी पता है लेकिन समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर सुनवाती। तो आज अगर आप बलराम जयंती मना रहे हैं तो हमारी ओर से उसकी बधाइयाँ।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: तो आज 2 सितंबर है और हमारे बहुत सारे साथी याद दिला रहे हैं कि आज अपने जमाने की जानी मानी खूबसूरत हीरोइन साधना जी की भी बर्थ एनिवर्सरी है। तो चलिए आप सभी के लिए साधना जी पर पिक्चराइज ये गाना।

0: The journey of Ram and Sita.
1: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
2: Hey, Prasanna Mahalakshmi kehti hai, bolo prem ki bhasha.
1: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
4: From Southall streets to the London rain. From the tube to your sofa again. UK, the big bang of entertainment. Jio Hotstar is here. Blockbuster movies, the latest shows, best of reality shows, and stars you know. From stories that thrill to moments that delight, there's something new to watch every night. So get ready. Jio Hotstar is now live in the UK.
5: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
6: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
6: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे.
7: Hi, this is Chitrangada Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the NKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
8: जो कल जन्म हुआ था, वो Big Boss में दोबारा होगा.
9: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colors TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE396.
10: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
11: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
10: Get your free tickets. Book now using the promo code LAIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
1: Exclusive media partners LAIKA Radio. Sponsored by Sari Pleeta, Shana Foods, Begin and Regrow.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
12: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: मनोरंजन विथ रवि शर्मा. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: So Gold Rate is 103.6 pounds per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
1: तो लीजिए आज का हमारा और आपका साथ बस यहीं तक. अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज़ तक और न्यूज़ के उस पार बाली ब्रह्मवत आपका साथ देंगे. लेकिन कल होगी हमारी और आपकी फिर से मुलाकात, तो ज़रूर साथ दीजिएगा. और ढेर सारे मैसेजेस भिजवाने के लिए, शो को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं आपसे. टेक केयर, सी यू टुमारो.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colours TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE396.
5: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the house of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
7: गारंटेड.
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल,
7: फोन 02085748410.
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410.
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place.
11: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
13: Danu 11, 11. Danu Properties.
14: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ.
15: अपना बनाया तेनू.
14: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में. टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम 20 pounds. VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल. बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216. टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, Ilford.
8: The wait is finally over.
16: अब सही सुर लगा रहे मुमताज.
8: Mirzapur is coming to the big screen.
17: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से.
8: Power, revenge और Mirzapur की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल.
18: अबे कालीन भैया है वो किंग ऑफ Mirzapur.
8: पंकज त्रिपाठी एज कालीन भैया, अली फजल एज गुड्डू पंडित और Mirzapur के आइकॉनिक कैरेक्टर्स. जस्ट 2 days टू गो. Mirzapur द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमाज September 4th.
17: Mirzapur में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
19: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
20: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
21: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
20: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
0: Up next, Ballybrumbat with Gold Afternoons on Leica Gold.
22: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Wow. What can I say about these two beautiful songs? And I hope you're also enjoying yourselves. Main jo laya hoon aaj aapke liye, khazana hai, khazana. Yes, as you already know, we're going to remember Sadhna Shivdasani. Sadhna Shivdasani, unki speciality thi, that fringe. Unki hairstyle jo thi, which became a craze. वो कैसे हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ. एंड देन शी ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम वेरी बैडली फ्रॉम अ सर्टन डिजीज एंड दैट वॉज हाइपर थायरॉयडिज्म से क्या उनको असर पड़ा और इनकी करियर कैसे रुक गई थी और कैसे लोगों ने सोचा कि उनकी करियर अब ख़त्म हो गई है. लेकिन वो बिंदास वापस आई वो 3 साल के बाद. क्या क्या हुआ वो मैं आपके साथ बात करूँगा. बाकी तो आपको सब कुछ मालूम है ऑफ कोर्स, कब जन्मी और कब दुनिया से चली गई. तो ये सब बातें हम नहीं करेंगे, छोटा सा एक सेंटेंस में कर लेंगे. लेकिन आगे जाते हुए मैं उनके बारे में थोड़ा सा दोहराऊंगा कैसे उनके हस्बैंड से मिली वो. एंड ऐसी कहानियां दिलचस्प होती है जो शायद कभी कभी विकिपीडिया में ना हो, गूगल में ना हो, तो कुछ बातों का मज़ा आता है. मैं हूं बाली ब्रह्म भट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com. ऑल्सो 421st day of Leica Radio Midlands. और DAB की बात आती है तो बर्मिंगम वालों हम अवेलेबल हैं. तो सुनते जाइएगा और लुत्फ उठाते जाइएगा. मेरे बाद 4 बजे होंगे सैंडी शाह ऑन ड्राइव टाइम एंड सिमिलरली ऑन Leica Radio Midlands इट्स गोना बी राज पत्तन. सो एंजॉय द शो विद मी अप टू 4 PM.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: The rates I am looking for is your £1 in British sterling, which can get you 127.65 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online, or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
1: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colors TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE 396. Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
3: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
3: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
1: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
3: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
1: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
3: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me or you.
1: साफ़ और ट्रैवल ऑटो प्रोटेक्टेड।
5: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
6: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
5: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
7: अ स्पेक्टेकुलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
8: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
7: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन।
9: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
10: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
11: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
12: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
13: Four beers, please, garçon!
12: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
14: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
15: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
14: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
15: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
14: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
15: Exclusive radio partner, Laika Radio Network. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
16: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
17: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
18: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
17: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
18: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
17: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
18: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
19: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर. Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे.
20: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
21: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: The journey with Sadhana resumes here.

0: Sajana.
1: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: And we have to now start the story of a wonderful personality जिन्होंने बड़ा हंगामा कर दिया इंडस्ट्री में, द मिस्ट्री गर्ल जैसे कहा जाता था. यस, मिस्ट्री गर्ल. एंड वॉट वॉज द नेम बाई विच शी वॉज बोर्न? शी वॉज बोर्न एज अंजलि, अंजलि शिवदसानी. जी हाँ, साधना शिवदसानी नाम कैसे हुआ? सबसे पहले शी वॉज बोर्न इन कराची, आई थिंक इट वॉज कराची, यस इट वॉज, एंड दैट वॉज ऑन 2nd of September 1941 इन कराची, एंड इट्स द 85th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट एक्ट्रेस हूज सॉन्ग्स वी आर गोना बी लिसनिंग टू एंड हूज स्टोरी वी आर गोना बी सेइंग. 85th birth anniversary. If she was alive, she would have been 85 years old today. She was active for 23 years. Well, actually 20 years, dekha jaye to. 1958 se 1981 tak, par beech mein 3 saal, she was off work or off screen, I would say. Wo kyun tha? Main batata hoon na. बेसिकली देखा जाए तो एक पहली फिल्म जिसमें उन्होंने डेब्यू किया था, देखा जाए तो इट वॉज अ सिंधी फिल्म एक थी, लेकिन हिंदी फिल्मों की अगर बात आए, लव इन शिमला एक सिंधी फिल्म जो थी वो थी अबाना 1958 की. वहाँ एक रुपए की पेमेंट मिली थी एंड स्क्रीन मैगजीन में फोटो भी आई थी. वो फोटो देखकर शशाधर मुखर्जी बड़े प्रभावित हुए वो फोटो देखकर, एंड ही रोप्ड हर इन फॉर लव इन शिमला. और लव इन शिमला में डायरेक्टर थे आर के नैयर वॉज टू बी हर फ्यूचर हस्बैंड. जी हाँ, एंड आगे जो मैं बात करूंगा इज अबाउट माइग्रेशन. द फैमिली माइग्रेटेड टू बॉम्बे इन 1948 एंड देन श्री 420 1955 की राज कपूर की फिल्म, उसमें देयर वाज एन अनक्रेडिटेड अपीयरेंस. और 14 साल की उम्र में मुड़ मुड़ के ना देख, उसमें भी वो थी. मजा आएगा अगर आप देखोगे और रिकॉग्नाइज करोगे. छोटी सी साधना, यंग साधना. फिर तो आज की तारीख में आंख बंद करके साधना का चेहरा आपके सामने आएगा, सो इट विल बी विद द साधना कट. वो कैसे हुआ था, इन द नेक्स्ट आवर वी शैल बी डिस्कसिंग देम. नेम चेंज फ्रॉम अंजलि टू साधना, वो भी हम नेक्स्ट आवर में डिस्कस करेंगे. लेकिन सो फार वी नो दैट शी स्टार्टेड ऑफ एज अ लिटिल गर्ल इन 1955 विद राज कपूर, श्री 420 अनक्रेडिटेड अपीयरेंस, एंड मुड़ मुड़ के ना देख 1955 में, एंड देन दैट वाज सॉरी व्हेन शी वाज 14 इयर्स ओल्ड, एंड देन सिंधी फिल्म अबाना 1958 की, एंड देन लव इन शिमला, दैट्स वेयर हर लाइफ चेंज्ड टोटली. व्हाई? बिकॉज शी मेट हर हार्टथ्रॉब, हर फ्यूचर हस्बैंड हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म. इन्होंने डायरेक्टोरियल डेब्यू भी किया था. शी डायरेक्टेड अ फिल्म कॉल्ड गीता मेरा नाम, एंड देन शी विथड्रू फ्रॉम एक्टिंग वो फिल्म डायरेक्ट करके, एंड देन द फाइनल देयर वाज अ डिलेड रिलीज फिल्म कॉल्ड उल्फत की नई मंजिलें 1994 में एंड द ट्रायो ऑफ द मिस्ट्री गर्ल उसके गाने हम नेक्स्ट आवर में सुनाएंगे आपको एंड दे आर सॉन्ग्स ऑफ अनीता वो कौन थी तीसरी कौन थी फिल्म याद है आपको वेल मैं बताता जाऊंगा चलो बता देता हूं मेरा साया ये तीन फिल्मों में से शी अर्न्ड अ वेरी गुड नेम लेकिन शी गॉट बीटन बाय द ड्रेडेड डिजीज कॉल्ड हाइपर थायरॉयडिज्म वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इन द मीन टाइम लेट्स स्टार्ट एंजॉयिंग द सॉन्ग्स ऑफ साधना शिवदसानी ऑन हर 85th बर्थ एनिवर्सरी मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइका गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स एंजॉय
1: Wake up to Kajalon breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Leica Gold. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: Mia!
5: Yeah?
4: Don't forget flu vaccine today.
5: Really?
4: Yeah, online consent form signed ages ago. It helps stop you getting really poorly with flu or passing it on to your baby brother.
6: If you have a child in reception to year 11, help protect them with the flu nasal spray vaccine. Your child's consent form could arrive by email, text, through your school app or in their bag. Look out for it and complete it. Stay strong. Get vaccinated. Find out more at nhs.uk/child-flu.
2: Good afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pulp, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara najikna Asian shops ma.
7: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com
8: TravelHub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड
8: विजिट TravelHubWorld.com
9: From Southall streets to the London rain. From the tube to your sofa again. UK, the big bang of entertainment. Jio Hotstar is here. Blockbuster movies, the latest shows, best of reality shows, and stars you know. From stories that thrill to moments that delight, there's something new to watch every night. So get ready. Jio Hotstar is now live in the UK.
10: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
11: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
12: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
13: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
14: Dubai is the place. 11, 11.
13: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
15: Danube 11, 11. Danube Properties.
16: 07300998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन

0: वाह नौशाद साहब, शकील बादाई, वी आर प्लेइंग सॉन्ग्स ऑफ साधना शिवदासानी ऑन हर 85th बर्थ एनिवर्सरी.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: मरीज इश्क का क्या है जिया जिया.
3: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
4: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Looking at all the currencies, each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3478, Indian rupees 127.87, Afghanis 88.68, Pakistani rupees 373.8, Kenyan shillings 174.45, and Mauritian rupees for one sterling pound 63.61.
5: Leica Radio.
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £103.41 per gram.
4: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
6: सना नासिर लाइक अ गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है. बिग शो सुनना भूलिएगा मत.
7: गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रम्बर्ट इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन फूड्स, योर ट्रस्टेड नेम फॉर दाल भात, पाव भाजी, बिरयानी एंड सो मच मोर. अवेलेबल नाउ एट योर नियरेस्ट एशियन शॉप. जैमिन फूड्स, द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया.
8: बिग बॉस 20 स्टार्टिंग फ्रॉम संडे द 6th of September, only on Colors TV, Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE396.
9: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu, from the house of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
10: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
11: From Southall streets to the London rain. From the tube to your sofa again. UK, the big bang of entertainment. Jio Hotstar is here. Blockbuster movies, the latest shows, best of reality shows and stars you know. From stories that thrill to moments that delight, there's something new to watch every night. So get ready. Jio Hotstar is now live in the UK.
12: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02087677627.
13: दुबई इज कमिंग टू लंदन
14: दिस 5th एंड 6th ऑफ सितंबर. स्टेप इनटू द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो बाय NKN मीडिया
13: एट लंदन हिल्टन ऑन पार्क लेन. मीट टॉप एलीट डेवलपर्स फ्रॉम दुबई. एक्सप्लोर हैंड पिक्ड रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज properties and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
14: Special appearances by Chitranga Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
13: Hurry and register now
14: at nknpropertyexpo.com.
13: Your next investment could begin here.
14: Official radio partner, Leica Radio.
15: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
16: अयोध्या की आवाज अब लंदन की धरती पर सिद्ध आश्रम धाम में परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में देवी पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा श्री राम कथा
17: नाम है तेरा।
16: 4 से 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 02084260678 पर कॉल करें। जय श्री राम।
18: The wait is finally over.
19: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
18: Mirzapur is coming to the big screen.
20: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
18: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
21: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
18: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, releasing in cinemas 4th September.
22: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
23: Hey, friends के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ Netflix and chill, a देसी तड़का is total risk, है ना?
24: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in चार मजेदार flavors.
23: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
25: Across London, this is Bali Brambat on Leica Gold.
0: A film directed by Sadhna, Geeta Bina Naam,

Yes, it's Sadhna. She... Shiv Dasani. एंड फिल्म गबन का ये गीत है, 1966 की फिल्म जिसमें लता मंगेशकर जी ने गाया, शंकर जयकिशन ने संगीत दिया फॉर साधना. आए रे दिन सावन के. और नेक्स्ट सॉन्ग इज असली नकली.

राज खोसला जी ने तीन फिल्में बनाई थी ऑफ द ट्रिलॉजी ऑफ द मिस्ट्री गर्ल साधना, उनमें से ये तीसरी फिल्म मेरा साया, मदन मोहन का संगीत।

0: hold rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £103.61 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Hello?
3: Mel, something huge has landed.
2: The UFOs, it's all over the news.
3: Better, the mini sale event. Hurry up and get down here.
2: I think that's why the aliens are here too.
3: I do now, gotta go.
4: The sale event has landed. Out of this world offers across the entire range from 3rd to 7th of September at your local mini retailer. Applicable on new mini orders placed during the sale event and registered by 31st December 2026. Visit mini.co.uk/sale event.
5: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
6: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colours TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE396.
7: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
8: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
7: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
9: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल.
11: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of Jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
10: Available at ethnic grocery store near you. Ganpati Bappa Moria.
12: We're finally going home for the wedding.
13: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
14: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
13: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
14: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
13: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
14: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
6: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
15: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410. दैट्स 0208574 8410.
6: साउथ हॉल ट्रेवल. Auto protected.
16: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
17: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी.
18: तो आइए गॉडफादर एंड को, विवेक हाउस बार एंड किचन.
17: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स. हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
18: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 0192322727274. बुक योर टेबल टुडे.
19: सिर्फ 2 दिन बाकी इस जन्माष्टमी, कान्हा के जन्मोत्सव की खुशियां मनाइए जैमिन फूड्स के साथ. जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया, खुशियों का खजाना.
20: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
21: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
22: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
23: Dubai is the place.
22: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
24: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
25: 3 days to go. The NKN Dubai Property Expo, London Hilton Park Lane, supported by Leica Radio Network. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favourite shows. Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold.
1: This one for Shivani Ji. Film hai Intikam.

0: क्या गाना है ना, विद द म्यूजिक एंड द सिंगिंग ऑफ रफी साहब एंड आशा भोसले. एंड दिस सॉन्ग वॉज सो पॉपुलर, एक मुसाफिर एक हसीना में, तो उन लोगों ने इस पिक्चर को कलराइज किया था बिकॉज इट गॉट सो पॉपुलर. एंड जबानी यार मन तुर्की, एंड संगीत था ओपी नैयर का और इसकी लिरिक्स शेवन रिजवी ने लिखी थी. एक्चुअली देखा जाए तो जबानी यार मन तुर्की, इट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ क्लासिकल पर्शियन कपलेट. इट वॉज रिटन इन द 14th सेंचुरी बाई पोएट अमीर खुसरो, वाइल द पॉपुलर हिंदी फिल्म सॉन्ग द सेम नेम इन द 1962 फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना वॉज रिटन कम्पोज बाई लाइक written by Shezan Rizvi and O.P. Nair composed it. So, ye gana, and jo pehla gana tha, that was the the alphabet one. Yes, aur Rafi sahab ne kya uthaya is gane ko, Alif Zabar. Actually, wo kya hota hai? Just like in English, you know, children learn A for Apple, B for Bombay, C for Charlie, D for David, E for Edward, F for Father, G for George, H for Harry, I for India, J for Jack, K for King, L for London, M for Mother, N for Novo, O for Orange, P for Peter, Q for Queen, R for Roger, S for Sugar, T for Tom, U for Uncle, V for Victor, W William, X for X-ray, R for Yellow, Z for Zebra. वो जैसे A to Z होता ना, वैसे हिंदी में भी होता है A से अनार, B से ये और वो. तो ऐसे ही उर्दू और पर्शियन स्क्रिप्ट्स रिसाइटिंग लेटर्स कंबाइंड विद वाउल्स, साउंड ऑफ जबर, जेर, पेश, ये सब जो प्रोनाउंसिएशन होती है, मैं तो सारे नहीं बोल सकता. रफ़ी साहब डेफिनेटली डिड इट, एंड संग बाय रफ़ी साहब. एंड इकबाल कुरैशी वॉज द वन हु कंपोज्ड द सॉन्ग, एंड देन लिरिक्स बाय राजेंद्र कृष्ण. राजेंद्र कृष्ण ने कमाल कर दिया ये गाने की लिरिक्स लिखकर. एंड इट्स लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी टीचिंग ट्यून बोलते ना, वेयर द सिंगर इज ए प्लेफुली रिसाइट्स द फाउंडेशन यू नो ऑफ द ग्रामर एंड फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन. तो दोनों गाने आपको पसंद आए होंगे. एंड वी आर रिमेम्बरिंग नन अदर देन Sadhna Shiv Dasani. Sadhna ji, who was born with the name Anjali Shiv Dasani. Oh, naam kaise change ho gaya? The name change of Anjali to Sadhna because her father was a fan of a Bengali actress and dancer called Sadhna Bose. Abhi, so he changed her name from Anjali to Sadhna when she was 5 years old. सोचो डैडी ने ही चेंज कर दिया बिकॉज ही वॉज अ फैन ऑफ द बंगाली एक्ट्रेस एंड डांसर हुज नेम वॉज साधना बोस. सो देयर यू गो, आई हैव कंप्लीटेड माय ट्रिब्यूट ऑफ साधना जी. एंड आपके जो मैसेजेस आए मुझे बहुत अच्छा लगा. इंतशाब जी, आपने जो कहा सुपर एक्साइटेड टू हियर अबाउट साधना शिव दसानी जी, एंड And one of the best tributes you gave of Sadhna Shiv Dasani ji. Thank you so much. And Rajinder Singh Kalraji is very knowledgeable about things and he always puts his points across. And I admire that. And thank you very much, Rama Patel ji, always passing comments on that. And Rekha and Kirit Manik, we got Princess Myla saying, Hello, Dada Bali ji. So, hello, Princess Myla. Thank you very much for your lovely messages. And what I can see is Salman Gauri saab, pata nahi Eid ka chand nikla aya aaj, aur unhone kaha ke sab mere doston ko dedicate kar do. Pata nahi 6 mahine mein ek baar aa hi jaate hain wo. और दूसरा एक सरप्राइज मुझे मिला, जसू शी इज़ नेवर कम टू माय शो यूजुअली, बट उन्होंने कहा आई वुड लाइक टू डेडिकेट टू माय हस्बैंड हैप्पी बर्थडे, हिज बर्थडे इज़ टुडे, हिज नेम इज़ नरेंद्रा एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जसू, सन रीतन, डॉटर इन लॉ सुजी एंड डॉटर फाल्गुनी एंड लिटिल जय एंड बाली बाय. व्हेनेवर यू अनाउंस ऑन एयर लेट मी नो, सो आई एम announcing it now. Okay, so there you go, happy birthday to your husband. I thought you would have you messaged so many messages to Rituji today and you did not mention your husband's birthday at that time, to samajh nahi padi mujhe kya chal raha tha. Anyway, a happy birthday to to him and enjoy the day with him and make his day worthwhile. Aage jaate hain, Bali Brahmbhatt here with Gold Afternoons, sponsored by Jaimin. That's right, Jaimin ne kamal kar diya Raksha Bandhan pe hampers dekar, and they are always there whenever koi bhi tehwar aata hai to wo log hame khush kar dete hain. To aage to Navratri bhi aa rahi hai aur Diwali bhi aa rahi hai, so wait for Jaimin hampers. I guess I shall refer to Alka ji for that. And enjoy the show, rest of the show. Our artist of the week is Mala Sinha. So, kaun sa gana hoga? Dekhiyega.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 127.65. 127.65 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold.
3: Gold Afternoons is sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
4: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colors TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE396.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Laika Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
8: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
9: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
8: Southall Travel.
9: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
8: Southall Travel can take you there.
10: Southall Travel, at all protected.
11: Ayodhya ki awaaz ab London ki dharti par. Siddhashram Dham mein param pujya Shri राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में देवी पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा श्री राम कथा
12: नाम है तेरा
11: 4 से 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 0208426678 पर कॉल करें जय श्री राम
13: बोले
10: तूने क्या कर रहा है रे?
13: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
14: ये तो बताओ, कोई पता चला?
13: गुरु गुरु,
15: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
16: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
17: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
18: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र।
15: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
19: टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
20: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Laika रेडियो नेटवर्क।
21: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
22: Hi, this is Chitrani Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the NKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
2: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

हमारे एक लिसनर मनिंदर जी, मनिंदर जी ने मुझे कहा कि अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट साधना जी. माय डैड एंड ताया जी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम काबुल टू मुंबई फॉर बिजनेस एंड दैट नाइट दे गॉट लेट एंड कुडंट फाइंड द टैक्सी एंड सडनली अ कार स्टॉप्ड इन

0: मैंने आपको पहले भी कुछ कहा था कि सैंडी शाह आ रहे हैं 4 बजे, एंड ही इज हियर। ओके, एंजॉय हिज कंपनी एंड राजपदन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स। बाली ब्रह्मभट्ट का नमस्कार।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: Sandy Shah on Gold Drive. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: So £1 is going to get you 127.43 Indian rupees, 88.93 Afghan Afghani, 374.02 Pakistani rupees, 165.36 Bangladeshi taka and 443.05 Sri Lankan rupees.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold trading at £104.07 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets. One of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: ओ फोन छोड़ दो अपना यार बात करो मुझसे
4: कोई मुझे
1: हेलो जी कैसी हैं आप
4: मैं अच्छी हूँ कोई कह रहा फोन छोड़ दो कोई मुझे पेपर पे पेपर पकड़ाता जा रहा है
1: ये लोग
4: मैं करूं तो क्या करूं
1: मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग स्टूडियो में कैसे आ जाते हैं हम बात करें और आ जाते और आके बत्ती बुझा देगा अभी एनीवे अनीसा जी कैसी हैं आप
4: जो आपने गाना सुनाया ना उसके बाद मैं नहीं बोलना कसम से मैं ये गाना सुन के तो कितनी देर तक बंदे का दिल करता है ना ही बोले दिल में खुब जाता है
1: मेरा मेरा भी यही है अच्छा, आप जब से वापस आएंगे आप जब से वापस आएंगे इतना असर हुआ है मेरे ऊपर अच्छा, कि कल से मैं नहीं आ रहा
4: नहीं आप खुशी के मर आप सेलिब्रेट करेंगे अकेले जाके घर सेलिब्रेट करेंगे कि जरूर
1: अकेले इज द वर्ड वेरी गुड अकेला अकेला खाऊंगा घर जाके मैं
4: डू व्हाटएवर
1: अनीसा जी हाउ आर यू यू गुड
4: वेरी वेल थैंक यू
1: आपकी बातों से आपके अंदाज

0: still it's one.
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: ye dil ka dard mere ghar mazeed ho jaye, mere wajood ki phir mujhko deed ho jaye. Khuda kare tujhe bechainiyan mayassar ho, tujhe bhi ishq kisi se shadeed ho jaye. लीजिए भी अब इश्क शदीद का तो पता नहीं, लेकिन मज़ीद मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं और मैं बता दूं कि अब आप समझ गए हैं, समझदार होंगे. सिर्फ सलमा जी नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सही पकड़े हैं सुमीला मुंगर जी, अमिता जी, मीनाक्षी ब्रह्मभट जी, लुबना जी लाहौर से, तोची जी और विजय गुडोरी जी. क्या बात है. तो मैं मतलब हाथ होला क्यों रखूं, हाथ भारी रहने देती हूँ. जी हाँ, और लाइका गोल्ड पर इस वक्त मैं आपको एक मैसेज जो है वो पहुंचाने जा रही हूँ, और ये मैसेज है मर्सिडीज बेंज वैंस की जानिब से. जी हाँ, अगर आप बिजनेस करते हैं, अपना कारोबार है आपका, तो आपकी वैन जो है वो बस आपके आने जाने का, कम्यूट करने का जरिया नहीं रहती, बल्कि ये आपकी रोजी रोटी और साख बन जाती है. इसीलिए मर्सिडीज बेंज वैंस ने अप टाइम प्रॉमिस किया है, यानी कारोबारी फायदों का एक मुकम्मल मजमुआ. जैसे सड़क पर 24/7 मदद, वर्कशॉप देर तक खुली रहना, गाड़ी पर हर लम्हा मॉनिटरिंग, यानी हर वो चीज़ जिसकी आपको अपनी वैन के डाउन टाइम को कंट्रोल करने और अपना कारोबार चलाए रखने की ज़रूरत पड़े. मर्सिडीज बेंज आपकी ज़रूरत समझता है. तो आज ही मर्सिडीज बेंज वैन सर्च कीजिए और बिना मतलब देर किए जल्दी से अप टाइम प्रॉमिस के बारे में ज़्यादा जानिए. शरायत और ज़वाबत लागू हैं. मर्सिडीज बेंज वैन्स का अप टाइम प्रॉमिस, अहलियत गाड़ी की मुताबिकत और मर्सिडीज बेंज के मजाज मुरम्मत कारों से सर्विसिंग से मशरूत है. शरायत और ज़वाबत जैसे कि मैंने कहा लागू होती हैं. तो मज़ीद मालूमात के लिए आप सर्च कीजिएगा mbvans.co.uk/uptimepromise.
4: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baatein, raag adharit gaane on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m.

0: सबसे प्यारा हिस्सा यही है, होगा होगा होगा। और आपका और हमारा मिलन कैसे नहीं होता, संगम कैसे नहीं होता। आप दुर्दाना अंसारी जी ने जो मैसेज भिजवाया, ऑनेस्टली क्या मतलब क्या बताऊँ आपको, उनके बस थोड़े से चंद बल्कि एक जुमला बताती हूँ। अनीसा, आपके आने से रेडियो वजनदार हो गया, मुझे मोटा कह रही हो यार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। जिसे आपका दिल गार्डन गार्डन हुआ ना, मेरी आवाज़ सुनकर मेरा दिल गार्डन गार्डन होता है आपका साथ पाकर। इसे बनाए रखिएगा। गीता हर्षद जोशी जी, मंजीत संगर जी, बोले बोले जवाब सही है।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Honey, I was in the pet aisle, and you'll never guess what.
3: What is that?
2: A gerbil. They were on sale.
3: Why would we want that?
2: They were doing 3 for 2.
4: Get the things you actually want for less. New lower prices are here to stay across storage, sofas, mattresses, and more. Available online and at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
1: This is Anisa Nasir with The Big Show.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईविंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट TravelHubWorld.com।
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
8: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
9: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
8: ये तो बताओ कोई पता चला?
9: गुरु गुरु,
10: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
8: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
11: शीघ्र शीघ्र।
10: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November।
12: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Online at Eventbrite.
13: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
14: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
15: अपना बनाया तेनू,
14: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का। वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20। VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 0793913726। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फर्ड।
16: From Southall streets to the London rain, from the tube to your sofa again. UK, the big bang of entertainment, Jio Hotstar is here. Blockbuster movies, the latest shows, best of reality shows, and stars you know. From stories that thrill to moments that delight, there's something new to watch every night. So get ready. Jio Hotstar is now live in the UK.
17: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
18: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
19: Dubai is coming to London.
2: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
19: At a London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
2: Special appearances by Chitrangda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
19: Hurry and register now
2: at nknpropertyexpo.com.
19: Your next investment could begin here.
2: Official radio partner, Leica Radio.
0: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com, कॉल 02087677627।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: लाइका गोल्ड, द परफेक्ट साउंडट्रैक फॉर अ ब्रिटिश समर हीट वेव.

0: बार कमल शिवनानी जी आपके जवाब ने हंसाया करके थैया थैया करें, दो बार जवाब दे सकते हैं, एक बार तो दीजिए पहले।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 127.4 Indian rupees, 88.7 Afghan Afghani, 374.1 Pakistani rupees, 165.3 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £104 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Biggest Indian and Pakistani classics with Anisa Nasir.
0: जी हाँ बिल्कुल, एंड आई होप कि आप इंजॉय भी कर रहे हो। दिनेश पोपट जी आपका जवाब सही है। सरद जी थैंक यू, बिल्कुल सही जवाब। नंबर एंडिंग विद 167 आपका जवाब गलत है। जैसी जी नीलेश जी हो खई जवाब गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। गुड इवनिंग।

0: आबिद जी, आपका जवाब भी बिल्कुल सही है और मैसेज बहुत प्यारा. बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, इट्स सो लवली टू बी बैक. और मुजम्मल जी और रानी जी, सलाह से आपके जवाब दोनों के गलत हैं, लेकिन कोई बात नहीं, होता है, ये तो ऐसी लाइट हार्टेड सी गेम है. मकसद तो ये जानना होता है कि कौन कहाँ सुन रहा है. गीतों में आज कॉमन रहा तेरे मेरे, ना सिर्फ तेरे ना सिर्फ मेरे, बल्कि दोनों ही वर्ड्स तेरे मेरे. उम्मीद करती हूँ गीतों को आपने एंजॉय किया होगा. और अब अगला गीत हमें ले जाएगा खबरों तक, खबरों के उस पार. आप रहिएगा तैयार, मतलब मेकअप शेकअप नहीं, वैसे ही.
1: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.
0: विजय गुडोरी जी, मेरी हमदर्दी आपके साथ है. कहते हैं सुबह 5 बजे उठकर मैं गोल्फ खेलने गया, 2 घंटे बारिश में भीगा और ओनली 9 होल्स. चले, अच्छी एक्सरसाइज तो हो गई ना, बहाने होते हैं ये भी नहीं. बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी प्यारों के नाम.

0: आपके महबूब स्टेशन पर आपके बहुत सारे महबूब गीत लिए सना से वेरी मच हाजिर। और अंजुम जी फरमा रही हैं कि इश्क ने देखो कैसी तबाही मचा रखी है, इश्क ने देखो कैसी तबाही मचा रखी है, आधी दुनिया पागल और आधी शायर बना रखी है। क्या बात है, लीजिए भी अब मैं तो आपका दिल बहलाऊंगी, आपको मीठे मीठे गीत सुनवाऊंगी और इस आवर में खास तौर पर उल्टे पुल्टे के लिए तैयार रहिएगा। चंद अल्फाज में आप तक पहुंचाने वाली हूँ, बहुत ही फेमस गीत है, बहुत ही पॉपुलर, और आप मुझे पूरा यकीन है कि झट से बूझ जाएंगे। मेरा मान मत तोड़िएगा, जरूर तवज्जो से सुनिएगा। अभी नहीं, अभी पहले जरा एक दो काम कर लें।
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 127.6 Indian rupees. So don't forget to exchange in branch online ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और भाई लीजिए, बहुत सारी फरमाइशें मुझ तक पहुंच रही हैं और एक घंटे में मैं जितनी भी सुनवा सकूंगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर फाइनल आवर में जरूर मेरी कोशिश रहेगी। और कोशिश करें कि ऐसे ऐसे गीत चुने, ऐसे ऐसे गीत सुने और सुनवाएं जो बहुत अरसे से सुने ना गए हों या आपके दिल के बेहद करीब हों। कोई खूबसूरत सी याद, कोई खूबसूरत सी बात अगर साथ में जोड़ कर मुझे लिख कर भेजें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एनीवेज आइए उल्टे पुल्टे की ये चंद अल्फाज में आपके कानों तक पहुंचा दूं। इतनी सच्चाई, खोटे सिक्के खरे और सूखे जंगल हरे। इतनी सच्चाई, खोटे सिक्के खरे, सूखे जंगल हरे।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Mel, something huge has landed.
3: The UFOs, it's all over the news.
2: Better, the mini sale event. Hurry up and get down here.
3: I think that's why the aliens are here too.
2: I do now, gotta go.
4: The sale event has landed. Out of this world offers across the entire range from 3rd to 7th of September at your local mini retailer. Applicable on new mini orders placed during the sale event and registered by 31st December 2026. Visit mini.co.uk/sale-event.
1: Anissa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7pm.
5: बस वेट करने के हैं चार दिन क्योंकि फाइनली आ रहा है बिग बॉस आपके स्क्रीन पर यार, तो हो जाओ तैयार मिलने मुझसे ऑन जियो हॉटस्टार एंड कलर्स।
6: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
7: Taxi!
6: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
7: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
2: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter. Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
10: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
2: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
10: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
12: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye chand, ye suraj, ye sitara, teri aankhein. Ye chand, ye suraj, ye sitara, teri aankhein. Sagar ki ye maujein, ye kanara, teri aankhein. Poocha gaya, ख्वाबों का खुलासा भी कोई है, बेसाख्ता हर शख्स पुकारा तेरी आंखें। और लीजिए भी अब कुछ नाम मैं भी शामिल कर लूं प्रोग्राम में। कमल शिवनानी जी और द राज ऑफ द आवर। वैसे मुझे ये बताएं कि प्रोग्राम के पहले से मैं आपने पूछा कि दो बार जवाब दे सकते हैं और एक बार भी नहीं भिजवाया, मतलब जाल में फंस गए थे मेरे क्या? उल्लास जी आपका जवाब बिल्कुल सही है टोरंटो से। मीनाक्षी ब्रम्बट जी वेल डन। फातिमा जी आपका भी जवाब सही है। और पता नहीं अब ये किस बात का जवाब है, लेकिन तारिक राहिल जी कह रहे हैं तुम्हारी चुप और हमारा लहजा, कभी मिलेंगे तो बात होगी। हमारी आंखें तुम्हारा चेहरा, कभी मिलेंगे तो बात होगी।
0: ये है लाइका गोल्ड। Holiday breaks are brought to you by South Old Travel.
2: Hi, आंखें भीग जाती हैं holidays के नाम से। South Old Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact कीजिएगा South Old Travel को आज ही on 0208-574-8410. South Old Travel is at all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. Making summer feel better. On the Leica Radio Network. ये है Leica Gold.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: फरमाइशें ओवरफ्लो हो रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि भारती जी आपके फरमाइश इसी घंटे में सुनवा देते हैं। और आपका मैसेज भी आ गया, क्या बात है, गई है शाम अभी जख्म जख्म करके मुझे, अब और ख्वाब नहीं देखने सहर के मुझे, इन आंसुओं से भला मेरा क्या भला होगा, इन आंसुओं से भला मेरा क्या भला होगा, वो मेरे बाद जो रोया भी याद करके मुझे।
1: This is Like a Gold.
0: और भाई Like a Gold पर एक बहुत ही मजे की बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे तो बड़ी मजे की लग रही है क्योंकि बात हो रही है बिग बॉस की। जी हाँ, सीजन 20 आ रहा है और होस्टेड बाय, जैसे कि आप जानते हैं, सलमान खान। और वैसे हर साल जाते जाते वो दिल धड़का जाते हैं कि पता नहीं नेक्स्ट ईयर मैं करूँगा या नहीं। ये सब उनके जो है ना, वो क्या कहते हैं, टैक्टिक्स हैं जो यूज़ करते हैं वो। तो होस्टेड बाय सलमान खान, द शो एयर्स एवरीडे एयर किया जाएगा एट 9:30 PM ऑन कलर टीवी एंड जियो हॉटस्टार पर फ्रॉम दिस संडे यानी कि 6 September। आई एम सो एक्साइटेड, आई कांट टेल यू। And for the first time, Jio Hotstar will stream every episode along with a live 24/7 feed from the Big Boss 20 house. Jio Hotstar is now also available as an app on Sky TV. Hai na khushi ki baat? Chale, muskuraye.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 374.1 Pakistani rupees, 88.8 Afghan Afghani, 127.4 Indian rupees, 165.3 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £104, 0.07, kya kehna chahiye, pence per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: चशम से एजाज जी, जनाब अहमद राही जी की डेथ एनिवर्सरी याद करवाने के लिए बेहद शुक्रिया। और आपने कहा कि उनका लिखा कोई भी गीत जो है वो मैं प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूं, तो लीजिए पंजाबी तड़का के रूप में आज शामिल करते हैं उन्हीं का लिखा ये गीत,
3: पंजाबी तड़का विद अनीसा।

0: This is Anissa Nasir with The Big Show.
1: बस वेट करने के हैं चार दिन क्योंकि फाइनली आ रहा है बिग बॉस आपके स्क्रीन पर यार, तो हो जाओ तैयार मिलने मुझसे ऑन जियो हॉटस्टार एंड कलर्स द कास्ट।
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
3: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर Travel Mantra.
4: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
5: Weddings, celebrations, corporate events, Ragas and sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak, world class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milaye 02088390880 और विजिट ragasun.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट। क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एम्बिशियस 11-11 इनिशिएटिव एमिंग टू कंप्लीट 11 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स इन जस्ट 11 मंथ्स फीचरिंग व्यूज, ओएसिस, ओशंस, एलीट फैशंस एंड स्पोर्ट्स। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू, सो व्हाई वेट? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 02039635757 to arrange your meeting.
7: सिर्फ दो दिन बाकी इस जन्माष्टमी कान्हा के जन्मोत्सव की खुशियां मनाइए जैमिन फूड्स के साथ। जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया, खुशियों का खजाना।
8: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
9: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
0: 3 days to go. The NKN Dubai Property Expo, London Hilton Park Lane, supported by Leica Radio Network.
10: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 02071321458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
0: Anissa Nasir with The Big Show, weeknights from 7 p.m.
11: हर तरफ

0: तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। शाम से पहले उसकी आंखें हावी शाम पे हो जाती हैं और छोटी बहर की लंबी गजलें उसके नाम पे हो जाती हैं। अच्छे गीतों के दीवाने सुनते रहिएगा, मुलाकात का एक दौर अभी बाकी है। गुड इवनिंग।
1: लाइक अ कूल लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन

0: बिल्कुल, और ये गीत मेरे जज्बात की भी तर्जमानी करता है। आपके पास आकर मेरा भी वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। एनीवेज, ये प्यारा सा गीत लिखा था राजा मेहदी अली खान साहब ने और ग्रेट म्यूजिशियन मदन मोहन जी, उन्होंने इसकी धुन जो है उसे तरतीब दिया था। बेहद शुक्रिया एजाज जी, थैंक यू वेरी मच। और आपने बूझ भी लिया कि यही गीत मैं सुनवाने वाली हूँ। आई होप कि आप सभी ने भी इसको एंजॉय किया होगा। और अब प्रोग्राम का अगला गीत जो है वो रुमीला जी की पसंद पर है, साधना जी की बर्थ एनिवर्सरी पर, आपके नाम बल्कि उनके सभी फैंस के नाम।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Rumila ji, aapke pasand bahut sare logon ke pasand bani. Behad shukriya pyara sa geet farmaish karne ke liye. Aur Vijay Gudori ji bata rahe hain ki Bali ji ne afternoon mein bahut hi khoobsurat tribute jo hai वो पेश किया साधना जी के लिए. अरे वाली जी तो हमेशा कमाल करते हैं माशाल्लाह से. और बेहद शुक्रिया, आपने मुझ तक भी इस बात को पहुंचाया. और मैं आप ना भी बताएं तो भी पता है कि उन्होंने डेफिनेटली 100 से भी ज़्यादा परसेंट दिया होगा. वेर इट कम्स टू आर्टिस्ट एंड ट्रिब्यूट्स, नो वन कैन बीट हिम. जीते रहें वाली जी. और लीजिए अब आगे बढ़े.
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
2: और आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी से आपको बता दूं, लेजेंड, द लिविंग लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति परफॉर्म कर रही हैं लाइव एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1st November, ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज अ दिवाली स्पेशल. टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स Like a radio network.
4: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Like a Gold रेडियो, Like a रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Like a रेडियो मिडलैंड्स पर.
0: दिस इज अनीसा नासिर विद द बिग शो.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road, Wembley. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट TravelHubWorld.com.
7: बोले तुझे क्या कर रहा है रे?
8: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
7: ये तो बताओ, कोई पता चला?
8: गुरु गुरु,
9: इस 6 November को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 November.
7: साधू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र
9: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November. टू बुक कॉल 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: From Southall streets to the London Rain. From the tube to your sofa again. UK, the big bang of entertainment. Jio Hotstar is here. Blockbuster movies, the latest shows, best of reality shows, and stars you know. From stories that thrill to moments that delight, there's something new to watch every night. So get ready. Jio Hotstar is now live in the UK.
12: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
13: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
14: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
15: Dubai is the place.
14: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
16: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
17: You know how fans shout at football matches?
18: Oh, wake up!
17: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. The sun is out, and so are the summer hits on Like a Gold.
19: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious, delicious possibilities with Tilda.

0: मोहब्बत कब किसी की मानती है, मोहब्बत को मोहब्बत जानती है। मुलाकातें वो पहली सी नहीं है, मोहब्बत भी तवज्जो मांगती है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: भाई आपको बता देते हैं कि आज वन पाउंड आपको किस करेंसी में क्या दिला सकता है। 127.5 इंडियन रुपीस, 374.2 पाकिस्तानी रुपीस, 165.3 बांग्लादेशी टका एंड 1.3 यूएस डॉलर।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by...

0: वाह अहमद राही जी।
1: चलने के लिए है, अब देखे कहां तक पहुंचे, दिल के अफसाने।
0: एजाज जी की पसंद,
1: निगाहों की जुबान तक,
0: बहुत ही खूबसूरत पसंद। अंसर महमूद जी आपके भी नाम। मेरे जाने के बाद लुत्फ लीजिएगा दोस्तों गोल्ड नाइट के चुने हुए म्यूजिक का, और मॉर्निंग में हाजिर हो जाएंगी आपके लिए ब्रेकफास्ट शो लेकर काजल। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। शेखर जी आपके पसंद का गीत डेफिनेटली शामिल रहेगा। वजाहत जी आपका भी बेहद शुक्रिया शो की पसंदीदगी के लिए, और उसके साथ साथ आपने कहा सभी गीत बहुत अच्छे हैं, और जो आखिरी गीत है उसे सुनना चाहा है। अगर मैं कहूँ मुझे नाम भूल गया तो आप मुझे माफ़ कर देंगे,

0: लाइका गोल्ड।
1: बस वेट करने के हैं चार दिन क्योंकि फाइनली आ रहा है बिग बॉस आपके स्क्रीन पर यार, तो हो जाओ तैयार मिलने मुझसे ऑन जियो हॉटस्टार एंड कलर्स।
2: Ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner Leica Radio Network.
3: Function rakha hua hai.
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड।
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
6: फोन 02085748410।
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
8: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra?
9: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 02039635757 to arrange your meeting.
10: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: London's favourite Bollywood classics all night. This is Like a Gold.
1: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
2: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
1: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs.
2: With the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
1: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: From Southall streets to the London Rain. From the tube to your sofa again. UK, the big bang of entertainment. Jio Hotstar is here. Blockbuster movies, the latest shows, best of reality shows, and stars you know. From stories that thrill to moments that delight, there's something new to watch every night. So get ready. Jio Hotstar is now live in the UK.
4: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
5: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
7: जो कर्जन में हुआ था वो बिग बॉस में दोबारा होगा तथास्तु
8: बिग बॉस 20 स्टार्टिंग फ्रॉम संडे द 6th ऑफ सितंबर ओनली ऑन कलर्स टीवी स्काई चैनल 706 वर्जन मीडिया 826 ईई 396
9: तू माने आना माने दिलदारा
8: क्रिएटिव्स टीम इवेंट्स एंड पीस नेशन यूके प्राउडली प्रेजेंट्स द विरासत टूर यूके विद द वन एंड ओनली लखविंदर वडाली On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhvinder Vidali and his live band.
2: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
10: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
11: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
12: ताजा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ

0: Like a goat. One performer.
1: Countless personalities.
0: A whole universe of entertainment.
1: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
0: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
1: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
1: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410. दैट्स 0208574-8410.
0: साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
5: जो कल जन्म हुआ था वह बिग बॉस में दोबारा होगा. तथास्तु.
0: बिग बॉस 20 स्टार्टिंग फ्रॉम संडे द 6th ऑफ सितंबर ओनली ऑन कलर्स टीवी, स्काई चैनल 706, वर्जिन मीडिया 826, EE396.
6: We're finally going home for the wedding.
7: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
8: Flights booked, outfits packed, but what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
7: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
8: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
7: Exactly. Flat rate, no bill shock and ready in just 3 minutes.
8: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
9: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
10: Taza kare apni yaadein Leica Gold ke saath.

0: Like a Gold.
1: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Jasmine.
2: Oh, terrible weather.
1: It's raining cats and dogs out there and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry and we'll help keep you covered.
3: See ya, good luck with the interview.
2: Thank you, bye.
1: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
5: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected. Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
6: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
7: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर